0: Radio Yan Arian 99.1. समय को ख्याल राखौं। 6 बज्यो। खरो विषयमा सरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चर्चा। ग्लोबल आइडी बैंक, सबैका लागि बैंक,
1: दिस होम इन्टरनेट।

खाएँ सब खाएँ रक्सी भने रक्सी मिठा के रक्सी सब होटल बाल्ने सुरु सुरुमा जा।